0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: मेरे नाल ता कोई खेड़ता ही नहीं, सब खोल दी लंग जंदे ने।
2: वादवा प्रोडक्शंस अते पनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
3: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
2: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
4: हुण दस मैनू कणकां दे ओले कौन?
2: रिलीजिंग ऑन 31 July।
4: दसो
5: किथे वज गई तेरी गड्डी?
6: गड्डी तां ठीक होजू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
7: सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने।
5: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते।
7: सिंह स्मैश रिपेयर,
5: 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
8: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
9: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख दी शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
10: डकैत ता साडे सारिआं दे अंदरों, मौका मिलदा है जो हाथ लगदा है ओ लुट लैंदा है।
2: ए सिर्फ फिल्म ही नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
10: जदों ए जोकर तख्त ते बैंदा है तां ओ राजा नहीं बनदा, ओ पूरे राज नू संकट मना लैंदा है।
2: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
3: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टप है।
2: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
4: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
2: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
5: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
2: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
6: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: मेरे नाल ता कोई खेड़दा ही नहीं, सब खोल दी लग जांदे ने।
8: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
9: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले।
8: स्टारिंग गुरप्रीत घुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
10: हुण दस्सो मैनूं कणकां दे ओले कौण।
8: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
10: दस्सो
11: किथे वज गई तेरी गड्डी।
12: गड्डी तां ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें।
11: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
6: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
13: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच
14: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख दी शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकदा है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
15: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
16: डकैत तां साडे सारिआं दे अंदर होंदा, मौका मिलदा है जो हथ लगदा है ओ लुट लैंदा है।
8: सिर्फ फिल्म ही नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
16: जदों ए जोकर तख्त ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ।
8: ਸਟਾਰਿੰਗ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਗਰਵਿਤਾ ਸਧਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।
13: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ, ਆਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ, ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨਿਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ, ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
17: ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
18: ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ,
17: ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਬਾਈਬੈਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੇ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਜੁਵੈਲਰਸ, ਸਟਾਕਲੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਕ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ, ਕਲਾਸੀ ਸਿਲਵਰ, ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਡਾਇਮੰਡਸ ਅਤੇ ਜੈਮਸਟੋਨਸ, ਕਸਟਮ ਜੁਵੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੈਡੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਬਾਈਬੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਰੰਤ। ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸੇਫ, ਰਿਪੇਅਰ, ਬੁਲੀਅਨ ਬਾਇੰਗ, ਸੈਲਿੰਗ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੁਵੈਲਰਸ, 310/2 ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਕ, ਕਾਲ 04935360042।
19: ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਏਟੀਓ ਆਡਿਟਸ, ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਏਟੀਓ ਡੈਥਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ sebipartners.au। ਸੈਬੀ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ।
20: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-655 और विजिट tireforce.com.au।
3: ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
4: ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ।
3: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ।
4: स्टारिंग राज कुंद्रा पायल राजपूत गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया
5: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 9077-9933
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
5: हर कदम तुहाडे नाल।
7: इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई स्टार्ट पंजाबी विच बोलना ता तुसी विक्टोरिया पुलिस विच नौकरी करन लई उस तों भी वध योग हो जिन्ना तुसी सोचदे हो। वधिया शुरुआती तनखा नाल शुरू करो अते नौकरी दौरान दूजी भाषा दी वरतों करके पत्ते कमाओ। विक्टोरिया पुलिस Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: मेरे नाल ना कोई खेड़ता ही नहीं, सब खोल दी लांग चंदे ने।
4: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश कर दे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
9: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
4: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी तानिया किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
8: हुण दस्सो मैनू कणकां दे ओले कौन।
4: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
8: दस्सो
10: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
11: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
10: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: सोना चाहिदा
5: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट।
12: ਕੁੱਕ ਕਾਲ 0493536042
13: ਬਲਜੀਤ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁੰਨਾ ਜੁਲਰ ਚਲੀਏ
14: ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ
13: ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਾ ਜੁਲਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ ਤੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ
15: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
16: ਪਾਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ
17: ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ
16: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ
17: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ
16: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ
18: ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀਜੇ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟੌਪਸ ਫਾਰ ਕਿਚਨ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ 0410-045-555 ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 104 ਕੋਲਿਨਸ ਰੋਡ ਮੈਲਟਨ

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433 280 252 ते 04332802

0: 174 AM।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की होया
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
3: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
1: 0433-280-252 कणकां दे ओले
2: साडा रब वसदा ए
1: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी तानिया किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार
3: कणकां दे ओले
1: Releasing on 31st July.

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी रेडियो
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरिया ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते
3: 15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है। अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहते। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नू देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
4: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45।

0: जो हाँ जी 1674
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: Don't worry about hiding your man, babe, because he couldn't pull me if he wanted to.
5: Come on!

0: आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इष्ट कीजिए,
1: क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Saga.
1: You are listening.
2: Hanji Hanji, Hanji Hanji, Hanji Hanji, Radio Hanji.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Radio Hanji.
1: Stay tuned.
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरिया तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
6: ओए असीं लोरिए हुन्ने आ सियाणे बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
0: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा,
6: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है?
5: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
7: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने।
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्क नामा।
8: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू, फिल्म इश्क नामा।
9: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैण भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
10: कि तुसी अपने घर दे उपकरणां नू बिजली नाल चलाउण बारे सोच रहे हो, ए तुहाडे सोचण नालों किते आसान है। इजी इलेक्ट्रिक SEC तुहानू छोटा अते बचता दा हिसाब लगाउण, उपकरणां दी तुलना करन अते भरोसेयोग ट्रेडीज नू इक्को थां ते लब्भण च मदद करदा है। तुसी बिजली दे बिलां ते $2,000 तों वी वध दी सालाना बचत कर सकदे हो। कि तुसी शुरू करन लई तैयार हो? easyelectric.com.au ते जाओ। बिजली बिलां ते बचत करना है बहुत आसान SEC दे नाल। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न वालों जारी।
11: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम दा रिपीट ब्रॉडकास्ट।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: मेरे नाल ता कोई खेलता ही नहीं, सब खोल दी लंग जंदे ने।
3: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करदे हन नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी, कणकां दे ओले।
4: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले दी।
3: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
5: हुण दस्सो मैनूं कणकां दे ओले कौण।
3: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
5: दस्सो।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

आकाश तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
3: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है।
2: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
4: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
2: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्क नामा।
5: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
2: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्क नामा।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22-कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टापा है।
0: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टापी आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
0: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252
2: ते। Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
3: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
4: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वद वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
7: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
8: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
7: फिर लवाइए कित्थों?
8: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
9: की तुसी ऐसी थां लभ रहे हो जो तुहानू तुहाडे लई अहम चीजां नाल जोड़ी रखे? पेश है सिल्वरब्रुक माउंट डुनीड विच एक नवी कम्युनिटी जिथे हुण विक्री चल रही है। वॉन पॉन्स रेलवे स्टेशन, शॉपिंग, स्कूल, पार्का अते आउण वाला खेड कॉम्पलैक्स सिर्फ थोड़ी दूरी ते हन। नाल ही जिलोंग, मेलबर्न अते सर्फ कोस्ट भी बिल्कुल नेड़े हन। डेवलपमेंट विक्टोरिया वल्लों विकसित सिल्वरब्रुक एक सरकारी सहायता प्राप्त डिवेलपर दा भरोसा लेके आउंदा है जो अजिहियां कम्युनिटीज तैयार कर रहा है जिथे लोग फल फूल सकन। होर जानकारी लई silverbrookmtdunedd.com.au ते जाओ जां silverbrook mount dunedd सर्च करो।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਰ ਵਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਵੱਡੋ ਵੱਡੋ ਦੇਖਦੀ
2: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਮੁਰਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਾਉਂਦੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਘੂਰਦੀ ਦੇਵੀ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्त लागू। हाँ जी रेडियो,
1: साडा शहर जलंधर।
2: तुसी चंडीगढ़ की कहते हो
1: जी?

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हासो कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, बिन पाने के नाय करी, जेती सृष्ट उफाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए, नाल चले सब कोए, चंगा नाव रहाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे, तां वात न पुछे के, कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस तरै, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुझे, जे तिस गुण कोई।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, केवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए को आखन पाए, ओ जाने

रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, जिथे भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

जाप श्री मुख वागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेने हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह नकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदे मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरकतेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जनम मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आव ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ।

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जमेश के आगा जिकर्म के आ

कि जगतं कृति है, कि छत्रं छत्री है, कि ब्रह्मं स्वरूपे, के अनुपव अनुपे, के आद अदेव है, कि आप अभेव है, कि चक्रं बहीन है, कि एक अधीन है, कि रोजी रजा कह रही में रहा कह, के पाक बेअब है, के गैब गैब है, के अफल गुना है, के साहल सुना है, के कारण कुनंद है, के रोजी दहंद है, के राजग्रहीम है, के कर्म करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दानी है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पैसे, के सर्वत्र राज्य, के सर्वत्र साजे, के सर्वत्र दीने, के सर्वत्र लीने, के सर्वत्र जाओ, के सर्वत्र भाओ, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पैसे, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज्य, के सर्वत्र शोक है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मानी है, सदैव प्रदानी है, के सर्वत्र जापी है, के सर्वत्र थापी है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के अकाल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसन वजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलाम है, सलीख दुदाम है, गनी बुल शिकस्ते, गरीब उल परस्ते, बुलंदर मुकाने, जमीन उल जुमाने, तमीजुल तमामे, रजूअल निदाने, हरीफुल अजीमे, रजाय यकीने, अनेकल तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरका स्वरूप है, त्रिमुक्त भूत है, प्रभगत प्रभा है, सो जुग सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैवल कलाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओं आदरूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभर्गन त्रिवादे, अगजे अगाधे, शुभंग स्वरूपागे, सुसर्वान रागे, तिरपुगत स्वरूप है, अच्छे जय छूत है, कि नरकम परनाश है, पृथ्वी परवास है, निरकत परवा है, सदैव सदा है, बेपुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, निरकत सदा है, बेपुगत परवा है, अनुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अधूत है, अनास है, उदास है, अधंध है, अभंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, अनचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अभेक है, अडा है, अगा है, असंभ है, अभंग है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजात है, चारपट चंतो प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रुआल चंद तो प्रसाद, नमो नरकनासे, सदैव प्रगासे, अनंग स्वरूपे, अभंगम भूते, परमात्म परमाते, सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे, निर्बाध भूते, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पोत्रे, न पुत्रे, न सत्रे, न मित्रे, न ताते, न माते, न जाते, न पाते, निर्साक शरीक है, अमितो अमिक है, सदैव परवा है, अजय है, अजा है, भागवती छंद तो प्रसाद, के जाहिर जहूर है, के हाजर हजूर है, मेशर सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सर्वल गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अधीश है, परंग परंग ईस है, समस्त अधीश है, अदेशल अलेख है, अभेशल अभेक है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जुमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है।

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड।

अंठन अबार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है बसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बिछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वमर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंगले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छान कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख लो।

तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बपरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

रूप जो कि तमाम आकार अपने चो पैदा करके फिर आप उन्हां दी प्रतिपालना करदियां अपने विच टिका के ते एक दिन उन्हां सारियां नूं अपने विच समो के जो कर्ता पुरख है वो है एक ओंकार उथों तक पुजन लई उन्हूं अनुभव करन लई उन्हूं जानन दे लई मैं बेनती करांगा सतगुरु दी कृपा दी लोड़ है सतगुर प्रसाद चूंके आपू पहुंचिया नहीं जा सकता रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगा ताए जिस बंदे दे हाथ नहीं है जिस बंदे दे पैर नहीं है जिस बंदे दिया बाहां नहीं वो दौड़ के किवें किसे नूं गले मिल सकदा हजूर कहंदे ने तो पै के चरण कर पाव के लोयन सुरत करे नानक कह सियानिए इव कंत मिलावा होए उस सतगुरु की कृपा दा राह सानू तरसाया तो सतगुरु कृपा करन उस एक ओंकार नूं अनुभव कर सकीए जान सकीए मिल सकीए उस नाल एक मिक हो

0: जीवन मिलिया असी खादा भी है, असी कपड़े भी पहने, असी रात नूं सुते भी हां। हजूर कहंदे ने ओ त्रिकार योग है, ओ लानत योग है खाना, ओ लानत योग है सोना, ओ लानत योग है तन दे कपड़े पाने। भला केड़ा लानत योग है? आओ अगली पंक्ति वाल चात मारिए जी।
1: त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो, जित होण खसम ना पाया।
0: त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो, जित होण खसम ना पाया। उन्हां दा शरीर त्रिग ते इस शरीर नाल साडा नाता बनिया, कुटुंब बनिया। कुछ कुटुंबे साडे शरीर दा, जिहड़ियां साडियां ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां ओ शरीर दा कुटुंब ने, ते शरीर दे कुटुंब च ध्यान देना। अगे संसार दे रिश्ते नातियां दा कुटुंब जुड़िया, ते सतगुरु एक गल कहिंदे ने त्रेके शरीर कुटुंब सहत सियो, क्यों जित हुण खसम ना पाया। जे हुण खसम ना पाया, जे मनुखा जन्म प्राप्त करके अपने मालक नू ना प्राप्त कीता, भलिया तेरा खाना भी लानत योग, तेरे कपड़े पहनने भी लानत योग, तेरा शरीर ते शरीर दे सारे बनाए संबंध भी लानत योग, क्योंकि तू हुण रब नू नहीं पाया। खसम मालक ओ धन भावे मेरे कोल है, मैं आरजी मालक बनिया फिरदा, अस मालक ओ है। भावे अज कपड़े मैं खरीदे, मैं तन ते पाए, पर पाठ पटंबर देन वाला कौन है। जह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, प्रसाद ते उसदा सीगा, कृपा ते उसदी सी। ते सतगुरु कहंदे ने तेरी कृपा नाल तन मिलिया, तेरी कृपा नाल मैनू कपड़े मिले, मैनू रात दी नींद भी तेरी कृपा नाल मिली। जे तू कृपा ना करे ना ते नींद भी नहीं आउंदी, ध्यान च रखियो। ते तू सुता भी, पर जिस दी कृपा नाल तेनू सुंदर नींद आई, उस करते नू जे तू जानिया नहीं, उस नू पाया नहीं, ते तेरा सारा उठाया कदम लानत योग है। चूंकि धन गुरु रामदास पातशाह एक गल कहंदे ने, तिनका खादा पैदा माया सब प्रित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब प्रित है, जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। मैं बेनती करांगा अगर उस करते दी रहमत दे नाल, हुण गल थोड़ी ध्यान च रखियो, साडा खादा सफल मालक नूं चेते करके खादा वाहिगुरु, साडे कपड़े पहनने सफल, कपड़े पहनने लग्या भी कहना वाहिगुरु तेरी कृपा है। ओ लोग भी ने जिन्हां नूं सुंदर तन दे कपड़े मिलने ते एक पासे रह गए, पुराने कपड़े भी नसीब नहीं हुंदे, मालक किड्डी कृपा कीती जे। तिनका खादा पैदा माया सब वित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब वित है, जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब वित है, जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते, तिनके कर्म धर्म कार्य सब वित है, जो बोले हर हर राम नाम हर साते। ते मेरे साहब कहंदे ने भलिया जे ए सारा कुछ प्राप्त करके खसम नू जानिया नहीं, वाहिगुरु नू पाया नहीं, ते तेरा लानत योग है ए सारा।

0: मानक जन्म पौड़ी सी ते पौड़ी का काम की है थले खलोते नु ऊपर पहुंचाना ध्यान च रखियो ए लख 84 जोन उपाय मानस को प्रभ दी वडियाई इस पौड़ी ते जोन नर चूका सो आए जाए दुख पाइंदा मानुख जन्म पौड़ी है ते पौड़ी ते खलोई दा नहीं पौड़ी ते चढ़ी दा डंडा डंडा चढ़ी दा हकीकत है मनुख जन्म मिलिया अमृत वेले जागे इशनान कीता एक डंडा चढ़ गए नितनेम कीता एक डंडा होर चढ़ गए सेवा विच जुड़े एक डंडा होर चढ़ गए शुभ गुण सत विच आए संतोख धारिया दया विच चले गए धर्म विच आ गए धीरज विच रहन लग पए डंडा डंडा चढ़ दे गए ते फिर रोज वाहिगुरु वाहिगुरु कीता समझ लेना पौड़ी दा डंडा डंडा चढ़ दे गए संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवट पागी पाए ये धर्म की पौड़ी है सीमा अहिंसा दया मृदु सत बचन तप दान सील संतोष तृष्णा बिना धर्म लिंग दस जान सार कतावली दा करता ते मैं इत्थे भी अर्ज कर दिया जो बेनी पंडित गुरु अमरदास जी कोल आया सी बड़ा विद्वान सी संस्कृत पढ़िया सी और फरल फरल संस्कृत बोलता सी तंग तथा कृपया विष्टम श्रू पूर्णा कुले कृष्णम बड़ी संस्कृत बोलिया तुहानू अर्थ आंदे ने सतगुरु कहंदे नहीं तुहानू पुराण आंदे ने सतगुरु कहंदे नहीं तुहानू गीता आंदी है सतगुरु कहंदे नहीं कहंदे तुहानू शास्त्र वेद नहीं आंदे सतगुरु कहंदे नहीं कहन लगे धन गुरु अमरदास पातशाह जी पंडित जी तुहानू किताबां फड़नियां आउंदियां पर मन दी सुरत ते हौमै हंकार वाली बिरती पकड़नी आउंदी है आखिया सी एहो मन गिरही के एहो मन उदासी के एहो मन अवरन सदा अविनाशी पंडित इस मन का करो विचार अवर के बोता पड़ा उठावे पार चरना ते टहलिया सी गुरसिख बनिया ते फिर 22 मंजियां थापियां ते एक मंजी बेनी पंडित नूं भी थापी सी गुरमत दे प्रचार करन वाला बनिया उन्हां दी अंश वंश विच होए ने पंडित हरदयाल जी उन्हां पुस्तक लिखी है जो कि साडे समय विच मस्कीन साहब जी दे समय विच ओ सानू साडे उस्ताद पढ़ाउंदे रहे उस विच बड़ी कुछ धर्म दी सेध दिंदिया ओ लिखदा सीमा अहिंसा दया मृदु सत बचन तप दान सील संतोष तृष्णा बिना धर्म लिंग दस जान ओ धर्म दे शुभ गुण पल्ले बनने ऐसी धर्म दी पौड़ी मनुखा जन्म प्राप्त करके अकेला खा पी के कपड़े पहन के साजो समान बना के शोभा शान बना के जिंदगी जी लैनी ए जीवन नहीं सतगुरु कहन लगे अगर ए पौड़ी हथों छुटक गई फिर हाथ नहीं आएगी मनुखा जन्म अगर चला गया कि दोबारा फिर मनुख बन जावांगे ना ना फिर ते 84 लाख जोन दी भटकना ते पता नहीं एक एक जोनी विच किन्ने किन्ने समय ते युग बीत जान ओ कई जन्म पहे कीट पतंगा तक तू चला जाएगा इस करके जे पौड़ी छुट गई ध्यान च रखियो असि वास दी पौड़ी दी थोड़ी पुरातन गल नू समझिए डंडा फड़िया उपर चढ़े फिर होर फड़िया फिर होर उपर चढ़े ओ अद तो भी उपर चले गए ते हाथ छुटक गया बोलो थले डिगेगा कि नहीं डिगे उन्हें कहंदे ने पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे भलिया तू अपने जीवन विच ए सिख एक दू जी बो लख हो लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होए एक इस राह ते तो इज्जत वालिया पौड़िया चढ़। मैं बेनती करांगा फिर चढ़िए होए 21 अगर चढ़ जाइए तो फिर एक ईश वाहिगुरु जी नाल एक मिकता हो जाती। पर जे पौड़ी छुटक गई फिर हाथ नहीं आएगी। अहला जन्म गवाया ए जन्म एवे अजाई ही गवा लवांगे जी।
1: दूजा पाओ ना दे लेव लागन जिन हर के चरण विसारे।
0: दूजा पाओ मैं हां ए मेरा है ए घर मेरा ए साजो समान मेरा ए दूजा पाओ अंदर हंकार पैदा करता है। ए दूजा पाओ होर पासे मोह जोड़दा है। मैं बेनती करांगा जदों दूजा भाव अंदर आ जांदा है ना देई लिव लागन फिर रब नाल प्यार कित्थों पएगा। वंडिया गया प्यार कुछ शरीर नाल पै गया अपने कपड़िया नाल पै गया अपने घर नाल पै गया अपने साजो समान ते शोभा मान वडियाई नाल पै गया। इन्ना प्यार पै गया इन्ना प्यार रब दे प्यार जोगा अंदर समय कोई ना बचिया। बस दूजा पाओ ना देई लिव लागन और हकीकत ए है ऐसी अवस्था विच जिन हार के चरण विसारे। वाहिगुरु जी दे चरण नाम सन ओ अंदरों विसार दिते। ए कदी सोचिया भी ना मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करना रब नाल प्यार ही भुल गया। अगर प्यार होवे ना पद्म विभूषण डॉक्टर भाई वीर सिंह जी एक गल कहंदे ने लगे प्यार ता प्यारड़ा पास वसे कदे अखियां तो ना होए ओले। यह प्यार लगे प्यार ता प्यारड़ा पास वसे कदे अखियां तो ना होए ओले कदे अखियां तो जे होए ओले। सूरत ओस दी दिलों ना होए ओले सूरत ओस दी दिलों जे होए ओले। नाम जीव तो कदे ना होए ओले नाम जीव तो कदे जे होए ओले सूरत दे तो सदा ले होए ओले। मालिक तेरे नाल प्यार पै जाए मैं उठदियां भी आखा वाहिगुरु मैं चलदियां भी आखा वाहिगुरु। मैं एक बेनती करांगा जदों मिर्जा राजा जय सिंह धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे दर्शन दीदार करके घर आया ना ते अपनी रानी नू कहंदा भाई वाह वाह कमाल हो गई उम्र बड़ी छोटी जी ओ नूर इन्ना चेहरे ते बख्शिशा ते बरकतां इन्नियां उन्हां कोल मैं ते निहाल हो गया कृत कृत हो गया बड़ी महिमा कीती। ते रानी कहंदी ए घर लेके आओ मैं अपनी अख नाल परखांगी देखांगी तुसी ते भोले पाओ पता नहीं एवें श्रद्धा करनी होवेगी। लो मिर्जा राजा जय सिंह धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं कहंदा है महाराज कृपा करो मेरे बंगले विच आओ मेरी रानी तुहाडे दर्शन करना चाहुंदी है। घर आओ सतगुरु आ गए। अगों रानी ने रस्ता पता अख्तियार की किया सी मैं उन्हां नूं परखना वेखना अपनियां गोलियां नौकरानियां हम उम्र वालियां नूं इको जे सूट सवा के पवा के ते विच आप बैठ के सतगुरां नूं हुण पहचान दे लई राजे राही कहलांदी है। राजा कहंदा जी दसो ना इन्हां विच मेरी रानी कौन है ते अंदर ए नीयत सी भी जे पहचान लैणगे मैनू देखिया ते है नहीं कदी जे पहचान लैणगे ते जानांगी रब रूप है ते जे ना पहचानणगे ते फिर समझांगी नहीं कुछ भी। हुण राजा महल विच प्रवेश करौंदिया ही कहंदा महाराज दसो ना भला इन्हां विच मेरी रानी कौन है ते धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे हाथ विच छड़ी फड़ी सी एक दे सिर ते रख के कहंदे ने तू भी रानी नहीं दूजी दे सिर ते रखिया तू भी रानी नहीं तू भी रानी नहीं तू भी रानी नहीं। जिथे रानी बैठी सी सिर ते छड़ी रख के कहंदे ने रानी हो के नौकरानिया विच बैठी चंगी लगती है कि आखिया रानी होके नौकरानिया विच बैठी चंगी लगती है। कहंदी सै मैं गुरु दे दर्शन करना चाहनी हां, सच दस गुरु दे दर्शन करना चाहनी है कि गुरु नू परखना चाहनी है। अगली गल हो राखी, अखा चो नीर वह तुरिया रानी दे। अगली गल हो राखी, कहन लगे देख पूर्व जन्म दे तप करके रानी बनी है, जे रानी बन के नाम भगती सिमरन ना कीता ते रानी तो नौकरानी हो जाएगी। कम उठी हाथ जुड़ गए चरना ते तैपी, महाराज कृपा करो ऐसा बचन ना आखो। ते सतगुरु पता की कहंदे ने, रानी गुरु ते श्रद्धा करी दी है शक नहीं करीदा। ध्यान च रखियो की आख्या, गुरु ते श्रद्धा करी दीए शक नहीं करीदा, श्रद्धा करिए ते झोलियां होर भर जांदियां ने, जे गुरु ते शक करिए ते जो झोली विच हुंदा वह भी निकल जांदा है। मैं बेनती कर दी हां, अज साडा प्यार चाहीदा गुरु नाल। मिर्जा राजा जय सिंह पता हुण हाथ जोड़ के की कहंदा, ध्यान च रखियो बड़े बहुत वधिया गल आखी उसने। कहन लगा महाराज अज पता चलिया मैं जिन्नी खुशामद औरंगजेब दी कीती है किते इतनी मैं आप जी दे चरना दी कर लिंदा, मैनू अज ही जन्नत नसीब हो जांदी। ते ये हकीकत है, अगर गुरु नाल प्यार रब नाल प्यार अंदर होने ममता ने मोह ने तोड़ दिता ते दूजा भाव ना दे लागन जिन हार के चर

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो आपके जीवन में अध्यात्म की नन्ही सी किरण के रूप में आपके कानों के माध्यम से आप तक पहुंचाता है हमारे शास्त्रों के अमूल्य ज्ञान से चुनकर ज्ञान के मोती। आपके अध्यात्म और आपके परम हित की बातें जो मैं आप तक लेकर आता हूं, आपसे मिल रहे रिस्पॉन्स ने मेरा उत्साह और बढ़ा दिया है। मेरी तरफ से आप सभी का आभार। आपके मैसेज देखते ही चित प्रसन्न हो उठता है मेरा। ये मेरा प्रयास अगर किसी एक जीव को भी भगवान के करीब लाने में काम आ गया तो मेरी सारी मेहनत सफल ही मानो। आपके लिए इस सुबह आपको हर तरह के भजन मैं सुनाने वाला हूं, जैसा कि आप सबकी इच्छा थी। और हमारी एक लिसनर है मनीषा जी, उनका एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न आया है। उनका कहना है कि हम इंडिया से यहां पर आ तो गए किंतु मन वहीं पर है। सब यहां पर ठीक चल रहा है किंतु जो मुझे डर है कि यहाँ के रंग में रंगने के बाद मेरे बच्चे अपनी संस्कृति ना भूल जाएं। यहाँ सब कुछ ठीक है किंतु वो आनंद नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करूं समझ नहीं आता। मित्रों, हम सब इस संसार में एक

ही लक्ष्य लेकर दिन रात भाग रहे हैं आनंद की खोज। जीवन पहले की अपेक्षा आज हमें कहीं अधिक आरामदायक दिखाई देता है, फिर भी क्या हमारे जीवन में दुख समाप्त हुआ? क्या चिंता, भय, तनाव, असंतोष और अकेलापन हमारा पीछा छोड़ चुका है? शायद नहीं। आखिर इसका क्या समाधान है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मनुष्य स्थायी सुख और वास्तविक शांति प्राप्त कर सके? आज के पुण्य दर्शन में हम सब मिलकर शास्त्रों में इसका जवाब समझने का, खोजने का प्रयास करेंगे, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ, तो आनंद की खोज के लिए हम सब भाग रहे हैं। हमारे चारों ओर एक से एक गैजेट्स हैं, सुविधा है, किंतु मन में अशांति सी बनी रहती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अपने घर से ही होती है। यदि हमें समाज बदलना है, अपने घर का वातावरण बदलना है, तो शुरुआत स्वयं से करनी होगी। अब आप ये मत सोचिए कि क्या घर बदलना पड़ेगा, क्या नया फर्नीचर खरीदना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप 3 BHK में रहते हो, 4 BHK में, या फिर छोटा सा घर हो, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो उसके वातावरण को बदलने की। जैसे आजकल हम अपने घर में शुद्ध वायु के लिए एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में चेतना प्यूरीफायर लगाने की आवश्यकता है। और वह चेतना प्यूरीफायर है भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद और भगवान का स्मरण। अपने घर को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि एक मंदिर बनाने का प्रयास कीजिए। हर घर में भजन हो ना हो, किंतु भोजन तो प्रतिदिन बनता ही है, तो क्यों ना उसी भोजन को आध्यात्मिक बना दिया जाए। कैसे, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो अपने भोजन को आध्यात्मिक बनाना बहुत जरूरी है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्रो मोक्षः। अर्थात जब आहार शुद्ध होता है तब मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने पर स्मृति स्थिर होती है और अंततः मनुष्य आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद उसे पहले प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कीजिए, फिर उसे प्रसाद के रूप में पूरा परिवार एक साथ ग्रहण करे। जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होने लगता है, नेगेटिव विचार कम होने लगते हैं, जीवन में पॉजिटिविटी और संतोष का संचार होने लगता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये परिवर्तन, ये बदलाव इतना स्वाभाविक होता है कि आपको स्वयं भी पता नहीं चलता कि कब भगवान की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ सुंदर बदलाव आ गया। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना पहला कदम है। अब दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं और वह है भगवत कथा। देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो दिन भर में आपस से बात ना करता हो। घर में किसी ना किसी विषय पर चर्चा तो होती ही है, कभी नौकरी की, कभी व्यापार की, कभी बच्चों की पढ़ाई की, तो कभी समाज और राजनीति की। यदि इन सब चर्चाओं के बीच प्रतिदिन केवल 10 मिनट भगवान की चर्चा भी जुड़ जाए तो घर का वातावरण ही बदल जाएगा। आप श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, महापुराण अथवा किसी भी प्रमाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ को लेकर परिवार के साथ बैठिए, एक एक श्लोक या एक छोटा सा प्रसंग पढ़िए, फिर उसे एक दूसरे को सुनाइए और उस पर प्रेम पूर्वक चर्चा कीजिए। इसके बाद तीसरा और सबसे सरल उपाय है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन या जप। भगवान के नाम का स्मरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई जप के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से और कोई सामूहिक कीर्तन के माध्यम से। आजकल के मॉडर्न युग में भजन क्लबिंग कितना ट्रेंड में है। अपने बच्चों को कहिए कि तुम भी भजन क्लबिंग करो, गिटार के साथ भजन करो। मुख्य बात यह है कि भगवान का नाम हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। एक बात सदैव याद रखिए, बच्चे हमारे शब्दों से कम, हमारे आचरण से अधिक सीखते हैं। यदि हम स्वयं भगवान का नाम जपेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे तो अगली पीढ़ी बिना कहे ही इन संस्कारों को अपना लेगी। केवल उपदेश देने से नहीं बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करने से ही स्थायी संस्कार बनते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। आप ऐसे ही अपने संदेश, अपने फीडबैक हमें भेजते रहिए। मिलते हैं अगले पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 और विजिट tireforce.com.au।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वाले नू लीगल वाले नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वाले ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का वी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: The funniest kids in Australia are here. क्या बातें हैं जी, क्या बातें हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हाँ कृष्णा, तो इस रेडियो हाँ जी 1674 AM। दिन है 7 तारीख, अगस्त का महीना, सुबह के 8:01 हो चुके हैं। टाइम है लाफ्टर थेरेपी का, और मेरे साथ हंसने के लिए आ गए हैं नोनिया जी।
1: सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते। आई थिंक आई हैव टू चेंज माय रफ्तार टुडे बिकॉज़
0: थोड़ी थोड़ी कहीं मेरी प्रेशर होता है, मैं भी बहुत धीमे धीमे चले, कोई चक्कर नहीं।
1: नहीं
0: ठीक है,
1: ऑल गुड, आई कैन बीट इट।
0: अच्छा,
1: दैट्स योर प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड और नॉट। आई कैन बीट यू,
0: मैंने पता नहीं, मैं कॉम्पिटिशन
1: उम्मीद करते जी सारे का फ्राइडे बहुत सोहना चढ़ गया होना। 7-8 क्या सोहनिया तरीका ने, 7-8-8 अज का दिन सोहना हो, सब का बहुत सोहना चढ़े और बहुत सोहना गुजरे भी, डेफिनेटली गुजरूगा, क्योंकि असं आस्ते अरदास सिर्फ इसे गल की करते हैं। यस, अज जिन्हों के भी जन्मदिन ने सारे बहुत बहुत मुबारक, एनवर्सरिया ने उन्होंने भी मुबारक। जे तुम कुछ होर शेयर करना चाहते हो मुबारक, और जो शेयर करोगे असि लाउड स्पीकर से बोलेंगे जी, फलाने सिंह नू, फलानी कौर नू, फलानी कुमारी नू, सब नू मुबारक।
0: मुबारक जी, मुबारक, तो मुबारक वैसे हजे आई नहीं, पर चलो मेरे वालों ही मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू एनी वन हू इज सेलिब्रेटिंग। मैं हूं थोड़ा फोमो फील हो रहा, मेरा नहीं है। पर चलो, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है,
1: इट्स ओके, इट्स ऑलराइट,
0: आएगा अपना टाइम, आएगा नोनिया जी, आएगा।
1: ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
0: ऑल इज वेल,
1: ऑल इज वेल।
0: ते हुन वेल करदे आपां बच्चियां दे नाल, ते शुरू करदे आं गल्लां बातां इन्हां दीआं, बुझारतां ते इन्हां दे चुटकले ते बोलियां भी। अज तां फ्राइडे आ गया, सरील गेट नहीं बोलियां, ते शुरुआत करदे आं फिर जी। ओपनिंग बैट्समैन होणगे मन्नत ते फतेह, ते बाद चो तवनीत एंड सिबलिंग्स, रेडी रहो।
1: यप,
0: हेलो
1: फतेह जी, मन्नत जी,
0: हेलो हेलो हेलो, हेलो। चलो अपां इस तरह करते हैं, फिलहाल कनेक्ट नहीं कर पा रहे उन्हां नाल, ते अपां तेग नूं ले लैने जी भाई।
1: ओ यस,
0: सही कि नहीं?
1: यप।
0: हेलो,
2: सत श्री अकाल
1: कृष्णा अंकल।
0: लगले में वीरा क्या ना होवे। हेलो, बोलदे नहीं अज, की चक्कर हो गया
1: यार? जल्दी जल्दी बोलो, असि काले पे हो, थोड़ा चुटकला सुनन नु, बोली सुनन नु।
0: ठीक है, हां जी, कौन बोलदा, कौन पे जी? हुन कन्फ्यूजन जी क्रिएट हो गई, मेनू लगदा मन्नत तुसी हो।
1: मन्नत,
0: चलो वेरी गुड। हां जी, किवें हो, ठीक ठाक? की हो गया अज, हैरान हो के पहली बारी आ गई?
1: तैयार करके लेके आयो साडे लई?
2: अज मैं सुनाऊंगी एक बोली।
1: ओके,
0: लो जी।
2: सस नरी ने सूट सवाया, पहुंचे रखाले तंग, गिद्दे विच नचदी दे पूंड मार गया
0: डंग, गिद्दे विच नचदी दे पूंड मार गया डंग, गिद्दे विच नचदी दे पूंड मार गया
1: डंग।
0: यार सवेरे सवेरे बच्चों वायलेंस च आ गए हो यार, फ्राइडे से आज
1: ते
0: है।
1: नहीं, मैंने तो गाना याद दुआता, कुड़ी बन के शहद दी मक्खी आयो डंग मार गई।
0: बल्ले, क्या बात है, क्या प्लेलिस्ट है छोटी, अमेजिंग। थैंक यू मन्ना, थैंक यू सो मच।
1: फतेह जी,
0: फतेह नाल कराओ फिर गल,
2: फतेह नाल भी गल कर लो
1: जी, करा दियो जी।
2: सत श्री अकाल नोनिया टी जी ने, कृष्णा जी,
0: सत श्री अकाल फतेह सिंह
1: जी, की हाल चाल ने, सुनियो मुनियो?
2: मैं वधिया, ते किवें हो?
1: ओ बस, तुसी वधिया, असी भी चढ़दी कला च फिर।
0: ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, की चली जांदा तैयारी स्कूल दी?
1: कुछ नहीं,
2: स्कूले तो रहे हैं, स्कूल गदर साहब।
1: झूठ झूठ बोलदा आड़ी, मन्नत कहंदी असी गड्डी च बैठे हैं, तू कहने तुरे आए हैं।
0: अच्छा, इन्नू पैदल तोरता होना ना?
2: नहीं,
0: अच्छा
2: भी असी गुरदे साहिब तो आके असी गड्डी च बैठ के पापा हन चला के सन स्कूले छड्डन लग गया। अज ते अगे मम्मा सानू ਦਿਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗੇ
0: ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗੇ
1: ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ
0: ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਮਾਧੁਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
1: ਸੀ ਵੀਰੇ ਇਟਸ ਬੋਲੀ ਆ
0: ਓਕੇ
1: ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
0: ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇਗ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਜੀ
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ
1: ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੇ
0: ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ
1: ਹੋ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ
0: ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੈਰੀ ਰੂਡ ਹੈ ਵੈਰੀ ਰੂਡ
1: ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ
0: ਯਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ
1: ਹਬੀਬੀ ਹਬੀਬੀ ਫੁਰਤਮ ਫੁਰਤਮ
0: ਫੁਰਤਮ
1: ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਤਮ
0: ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂਨੀ ਆਂਟੀ
2: ਪਤਾ ਨਹੀਂ
0: ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ
1: ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇਗ ਜੀ
2: ਬੋਲੀ